0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें।

0: three-step routine to achieve three times more gloss with the new Elvive Glycolic Gloss by L'Oreal Paris.
1: नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि Windows 10 लैपटॉप या डेस्कटॉप पर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड कैसे रिमूव करें। चलिए शुरू करते हैं। टास्कबार पर जाएं, CMD टाइप करें, कमांड प्रॉम्प्ट पर राइट क्लिक करें और सर्च बार में रन एडमिनिस्ट्रेटर चुनें।

कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद नेट यूजर टाइप करें और एंटर दबाएं। यह यूजर की डिटेल दिखाएगा, तो एंटर दबाएं। यह यूजर की डिटेल दिखा कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद नेट यूजर टाइप करें और एंटर दबाएं।

अब नेट यूजर और यूजर नेम टाइप करें। तो आपको अपना यूजर नेम और स्पेस एस्टरिस्क टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। यह आपसे एंटर दबाना होगा।

यह आपसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर और एंटर दबाना होगा। यह आपसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड टाइप करने और यूजर नेम टाइप करें। तो आपको अपना यूजर नेम और स्पेस एस्टरिस्क टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा। यह आपसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर एस्टरिस्क टाइप करना होगा और एंटर दबाना होगा।

यह आपसे आपका एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड टाइप करने के लिए कहेगा। तो कोई भी पासवर्ड न लिखें क्योंकि आपको पासवर्ड सही से पता नहीं है। फिर बस एंटर दबाएं। यह फिर से पासवर्ड कंफर्मेशन मांगेगा और फिर से एग्जिट दबाएं। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल और Facebook पेज पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: कारोबार हो या फरमाइश, मसाइल का हल हो या सेहत का राज, बिक टू बिक हो या खबरें, रेडियो अमल लाता है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन नशरियात। सुनते रहिए रेडियो अमल 88.4 की नशरियात।
3: रेडियो अमल नेटवर्क, जवान रंग अमल।
4: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं, और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीमयाफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
5: जाने तमन्ना, जाने
6: जहां मिले आपको तफरी,
7: जहां मिले आपको मालूमात,
6: और जहां गूंजे सिर्फ आपकी आवाज, दिन हो या रात,
7: रेडियो अमन 88.4 करक हमेशा आपके साथ।
6: रेडियो अमन 88.4 करक, अपनी आवाज, अपनी पहचान।

जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिल्कुल सुबह बरतारे खजर छ। तोस पेदमा छी, फमिलरमा छी, तोस टुल ठीक ठाक होई।

डेरा जी तो मरे ना मनाल कॉल करे टॉपिक बने हबरे उकड़े यो जहान मरे ना। अच्छा जी दापोची डॉक्टर सपना था डीडी कैच। मोहब्बत में होती हैं ये सारी बातें, मोहब्बत में होती हैं ये सारी बातें। चा ओ खसल फंदीना चा

देखो देख मैसेज बने पोइनिस वाल ब्याह डेरा मनन से प्रोग्राम के मैसेज वको टाइम दरसर खत्म शोई इंशाल्लाह सबोता सबोता 8-9 बजे पर इंशाल्लाह दूसरा मुलाकात कीजिए सबोता दे 6 सितंबर यानी योम ए दिफाए पाकिस्तान डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान चकम दे सबोता मन वीजी न सबोता इंशाल्लाह 8-9 बजे पर मॉर्निंग के इनी सहर टाइम दूसरा मुलाकात कीजिए 8-9 बजे पर तरे पर दुआगानो की यासत है द टोलो डेरा जियात मनन छ प्रोग्राम से मैसेज होगो छ प्रोग्राम से कॉल होगो दागे टोलो डेरा जियात मनना ओदेन लवा छ प्रोग्राम हम शेष रबो वरदो आगे हम डेरा जियात मनना टाइम दे खत्म शुवे इंशाल्लाह सबोत में सहार टाइम मॉर्निंग के दरस रखी जी दिबा मुलाकात आगा प्रोग्राम शुकम दे उर्दू के प्रोग्राम दे तो सर रदाई छ 8-9 बजे पर तारिक भाई ग्रेट मलक से कहो बन वालों का जुबान इतना आसान भी नहीं है और बैलेंस और सखबरा दिल्ली के लिए दो शाटिक शुडेर मन ना युमन खान वजीर फ्रॉम रिजमक बाई सखबरा दिल्ली के लिए दो चे बनो लैंग्वेज कवई बिया शाटिक शुभ इंशाल्लाह कभी में टाइम तो खत्म से सबूत इंशाल्लाह मुलाकात कीजिए 8-9 बजे पर सार टाइम परे परे दो लगे बाबा

अच्छा नो वेरी वेलकम टू द शो मो अच्छा वेलकम टू मौज मस्ती शो सोनिया खान को अच्छा देर जो तमा अहम गुलाले यानी सोनिया खान था मौज मस्ती शो से वेलकम हर कलाई खड़े देर जो तमाना गुलाले यो जहान मरना।

जिंदाबाद मौज मस्ती पाइंदाबाद आवाज इज वेरी गुड स्पेशल सलाम टू तेरे गुल राज भाई आसर नवाज एंड गुल राज को भी सलाम वालेकुम सलाम डेर जो तमन्ना यो जहान नना यो नाड़े मनना ओचे हेलो हाय और वेलकम टू द शो हाउ आर यू शो इज वेरी नाइस एंड स्वीट बिल्कुल आपकी तरह सलाम टू यू एंड ऑल फ्रेंड दिस इज मी बुम बुम दलाल एंड माय स्वीट कजन मोनी खान डेर जो तमन्ना शुक्रिया मोनी खान दिस शो आर दिली हुई नो मोनी खान था मौज मजे शो से हर का लाइव वेलकम स्टडी मशीन वीआई वेलकम टू द शो ओचे भाई जाना ओचे भाई हानिया वफा सुम्बल वजीरिस्तान गुलाले फातिमा वजीरिस्तान नाजी बहार मलाना फरियादी हम नशना अपगुल अपगुल को बिखी वर्क बिखी पता लगी और नयाब जन खेल यमुना खान को भी स्पेशल सलाम वालेकुम सलाम डेर जू तमना अंशा खान डेर जू तमना अल्लो या खजा शे नो ब्याह दाटा करो सरोवर दक्ष के से ब्याह ब्याह ब्याह सिक्किम निकला ब्याह वर्मे